इलीगल आफ्टर वो टॉट सक्स हो गया, मैं आपसे निराउट चाहो कि ना उन्होंने भूमि पे बल्ले आए पे नहीं पता सिला लग गया ना आप लोगों ने तमाने की बल्ले में अम्मा के चंग में नहीं तो संग ना तमालो तलो तुम असुलाओ मिगिची तेरे साइक्स में